क्या पढ़िए क्या गुनिया है, क्या वेद पुराना सुनिए, क्या पढ़िया क्या गुनिया है, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई।

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै है सब त्यावै तुजी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दाता रा।

तिन कुरबाणा हर त्यावै है हर त्यावै तुद जी से जन युग मह सुखवासी से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिनका भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोह पना ब्रिस्त गगन ते पई सभिन आन बधाई दई धन धन लोगन के राजा नुस्तन दाहा गरीब निवाजा अखल पवन के सृजन हारे दास जान मोहले हो उबारे कब्यो बाच बेनती चौपाई हमरी करो।

हमरे दुष्ट सबै तुम काबहो, आप हाथ दै मोहि बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सबैरन को आज संघरियै। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अबर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारी तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे।

जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आदि अंत कै उतारा, सोई गुरु समझिहो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। सिवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, कट कट के पट पट की जानै। जाबुन करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब आ करख कर तुहों कब हूँ, तुम मैं मिलत देहि तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको कृपा हन अनुमानत, महा मूढ़ कश भेद न

बेटी तुमरा लखा न जाए पसारा के मिन सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहीं पूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा हवै बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं पव आव रक्षा मेरी तुम करो सिख्यो बार सिख संगरो दोस्त जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस्तु तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताही सब काला दुष्ट रिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके ताप तनिक मह हर हो हृद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्व सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहि उबारा जिन नर नाम तिहारो का हा दारिद दुष्ट दोख तेरा हा

मोहि बचावहा सुखी बसे मोरो परिवार सेवक सिख सबैं करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की

0: ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए।
1: पंच भगवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान,
0: पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुरु एक ध्यान।
1: जे कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार,
0: तौल धर्म दया का पूत संतोख था प्रख्या निंसूत। धरती होर परै होर होर तिस्ते भारत

0: रूपे
1: नमो शाशान नमो भूपे
0: नमो दान दाने नमो मन मन
1: नमो रोग रोगे नमस्तं सनाने
0: नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र
1: नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्र
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणश्ये
1: अनुपे रूपे समस्तुल निवासी
0: सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता
1: अधोर दर्दं गगन गोगता
0: परम परम परमेश्वरं प्रोष पालन
1: सदा स

0: सर्वं ज्ञाता सर्वं ज्ञाता
1: सर्वं कर्ता सर्वं कर्ता
0: सर्वं प्राणं सर्वं प्राणं
1: सर्वं कर्मं सर्वं कर्मं
0: सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता
1: सावचन्त प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे
0: अनंगं स्वरूपे अभंगं मे भूते
1: परमात्मं परमाते सदा सर्वसा

0: बर अगंज हर नर पर
1: अंगन पर नामन मन सलाम
0: हर नर अखंड पर नर अमांड
1: अनास मन मन प्रकाश
0: गुलन पर नाम चल थल मुदाम
1: चिज अंगासन पंग
0: उपमा अपार कट मितु दाल
1: थल अमांड दिस्विस पांड
0: जल थल महंत दिस्विस बेअंत
1: अनास तिप्त त्रास
0: अजान बाहु एके सदा
1: ओंकार आद कतनी अनाद
0: हर खंड ख्याल गुरबर अकाल
1: नाम चित चरण नाम
0: आजी गाले आजी
1: जिन्ना बाद चिज गाद निरज बात
0: अंटूट पंडार अंठठ

0: गीते काले नंगी अकामे
1: अजरी शांद जे अले अपे अबे
0: अभू अजुवना सकास
1: अलंज पांज लख पख
0: अकाल दयाल लेख पेख
1: अनाम काम का अठा
0: अनाथे परमाथे अजो नियमोनी
1: नरंगे नरंगे नरूपे नरेखे
0: अकर्मना परमना गंजे अलेखे
1: शांत नमस्त प्रणामे समस्त प्रणासे
0: अगंजुल नामे समस्त निवासे
1: बबुते समस्त स्वरूपे
0: मन प्रणासी सुधर्मन बेबुते
1: सचिदानंद जे सतरंग प्रणासी
0: करी मूल को निंदा समस्त निवासी
1: बबुते के जाय गनी में
0: हरियन करियन करी मूल रही में
1: चक्रवर्ती जतर चक्र भुगते

0: रंग सुरंग सवारे
1: होठ रंग कुरंग से कूदत पौन के कौन को जात दीवारे
0: पारी पुजान के पूप पली बिते न्यावत शीश ना जात बिचारे
1: एते पै तो कांपे पूप दान को नागे पाए पधारे
0: जीत फिरे सब देश दिशान को बाजट तोल मृदंग नगारे
1: गुंजत गुड़ गुजान के सुंदर हिंसे तीन राज हजारे।

0: भगवान पजे बिन पुपत एक रति बिन एक न लिखे
1: सुबह सिपा दुरंद दुबा सो साँझ सुना दुर्जान लेंगे
0: पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे
1: तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे
0: श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे
1: पार बड़े बड़ियार बछारे सार की थार बचैया
0: तोर देश मलिंद मवासन माते गलान के मान मलैया
1: गारे गरान को तोरन हार सो बातन ही चकर चार लवैया
0: साहब श्री सब को से नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया
1: दानव देव निंद निसाचर पूत पवेक पवान जपेंगे
0: जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे
1: पुन प्रतापन बाट जैत तुन पापन के भो पुंच कपेंगे
0: सात स्वरूप पर सन फिरे जग सतर सबे अब लोग जपेंगे
1: मानव इंद्र गजेंद्र नरात पर जोन त्रिलोक को राज करेंगे
0: कोट स्नान गजा दिक दान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे
1: सिर बिसन सचिपत अंत फसे जंब फास परेंगे
0: जे न श्रीपति के प्रसन्न पग ते

0: को सिमट पे सक गिर गैठा
1: सगरी से सिखाए चंबवा जुगाच रूप से अंब
0: अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बाण सिख सकरो
1: दूषिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रनकाता
0: जेस दुष्ट सरनी परे तिनके दुष्ट के तुम मरे
1: पुरक जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सपटारे
0: जो कल को एक बात आए ताके काल कटनी आए है
1: रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट रिष्ट रहे तत्काला
0: कृपा दस्तन जाए न हरो ताके ताप तनक मोहरो।

0: सबराता
1: दिल भिक सकल दे को हरता दुष्ट दुखियन को छे करता
0: श्री अस्तुच्च पे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला
1: मन पाचक फल पावे सोई दुख न तिसे बे आपत को।

0: अमृत छान बिखे खाई माया मोह परम पै फूले सुतारासियों प्रीत लगाई
1: एक उत्तम पंथ
0: सुनियो गुरु संगत
2: तह मिलत जम।

सेविय अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसिय गुरु का जनन मरण दुख होवे सिफ दुख समदी नूर अरसों कुरसों चटीय तुद डिठे सचे पात साह मल जन्म जन्म दी कटीय सजन सच्चा पात साह सिर साह दे साह